मिलन गीत सिंगल चित्रपट संगीत अमरणीय रसायक नाचा वालपुर के हंड्रेड तीन ए अमरणीय पिरसुद निर्माण शील हदवत सुजो में लंगावे शब्द हद राहु मुकारी गीत तुली हद मदन में गीत ऐसु बीट हित देने चित्रपट एक दर्शन नियंद रात्र संदेली सा ए आतरी गलायन सुवंद पिरनु गायन सरल रिद्मयक निवे एक गीत गमनक वर्णयक सा सिनेमा लोके अमरणीय गीत करण शब्द लता वालपुर के हंड में गीत आन किनाट लोके पीड़ित वेनवा सुवंद सांसुन सा सिनेमा रसें पिरनु में गीत लंका रेडियो ओबवेत हंड राव मुह के लिए होइट ब्रिंगन वे इन आइन लीड द दस दी एटमॉस्फेयर क्लासिस श्रीलंकेसिस फिल्म कुंस उंडशन आइन फेंट के सुंगन फ्रॉम लता वालपुर उन आर मुत्तुसामी मुसिकालिस के स्टार्ट ट्रैक आइन बेसोंदर रूह उन एलिगेंस इस ईस्ट आइन स्टुक दस दी मैजी आल्ट फिल्म साइट एंड सुरु कॉल्ड वाम रूइक उन फॉलो एटमॉस्फेयर यस पुसी बाय लंका रेडियो लता वालपुर

मिलन गीत सिंगल चित्र प्रसंग गीते रसया लता वालपुर के हांडट थियन ए मुर्दू स्वीरी सुदू शब्दे सा गीते रे जीवे देन हैंगीम सुललित वो कला तुल सेमिंग बिरुतेन मैं गीते असुवित हित देने सिनेमा लोके मोहतक सेमिंग गलायन संगीते निहंड वर्ण लता वालपुर के हांडिंग लोके मुर्दू लेस विरुद्ध वेन हैंगी मुत्तुसामी के संगीते में गीते देन रसे अतिशय सरलाई एत गीते टे गलेपना उरिंग मुर्दू रिद्म्यक सांसुं वर्ण्यक सा पारन सिनेमा रसे गेन संगीते लता वालपुर के गायने में गीते टे देन आलोके हुंगक विशेष आई सेमिंग सांसुं हदवृत्त टे लंगावेन हैंगी मग अद में गीते ओबे दवसत सोंद पिनु सांसुं रसेक गेनो लंका रेडियोन सुललित वु kala suharan next lead sulalita u kala from lata walpole